नाम रूपी अमृत पीते ओह ही सुचे रहे हन सुचे से ही नानका जिन मन वसिया सोए उस परमेश्वर दा नाम जे हिरदे विच वस गया ता तू साफ सुथरा सोना बन के निरंकार दे द्वार जावेगा ते जे सिमरन नहीं कीता विकारां विच तू फस गया ता अपनी आत्मा नूं ही कलंकित करके जाएगा किसे माड़े पुरुष नूं संसार विच नहीं रहन देंदे कोल नहीं बैठन देंदे आख्या ऐसे तरह जदों तू दरगाह विच जावेगा उथे भी तेनू कोई कोल ना बैठन देवेगा उच्चारण करो श्री वाहेगुरु इसलिए गुरमुख त्यावे से अमृत पावे से ही सूचे हो ओहो ही सुचे हन ओहो ही चंगे हन जिन्हां ने जपया से

संतान गुरु नानक पातशाह बैठे हन एक सरोवर दे किनारे ते। ए सुकाल सरोवर है, जिस सरोवर ते काई आ जांदी है कवल फुल पैदा होंदे हन। ऐसे सरोवर दे किनारे ते बैठे सन ते की तकिया, पवरा आके बैठा कमल फुल ते, कैसा रस लै रहे ते घूं घूं कर रहा है, कदे उस फुल ते बैठदा है कदे उस ते बैठदा है। ते गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने की तकिया, जदों सूरज अस्त हो गया रात पैण लगी, ये पवरा बैठा सी कमल फुल ते, कमल फुल बंद हो गया ते विचे ही इसकी मौत हो गई, अंत हो गया। धन गुरु नानक पातशाह ए नजारा वेख के कहन लगे, ऐ भवरे रूपी मेरे मन, तू ही तो संसार विच एवें खचित होया, तू ही तो धन दौलत पदार्थां दा लोभी है, आवेख जिवें भवरे ने लोभ कीता है विच ही मर गया, तू ही संसार विच एवें चला जाएगा। परमेश्वर दे नाम दा लोभ कर जे करना, परमेश्वर दे सिमरन दा लोभ कर वही जे करना। तां गुरु नानक पातशाह जी ने शब्द उचारण कीता, पवरा फूल भवंत्या दुख अत भारी राम, तू पौंदा रहे वासना दा लोभी तू फिरदा ही रहा। इसे तरह साड़ी अवस्था है, असी भी संसार विच आके पौं रहे हां, अपने तंदियां विच भज रहे हां, सवेर तो शाम तक सानू परमेश्वर दा नाम नहीं चेते आउंदा। यही चेते है कि उत्थे चले जाइए, आदर कर लईए, ओह कर लईए, कोई पदार्थ प्राप्त हो जाए, किते धन दौलत दा नफा हो जावे, बस यही साड़ी दुनिया दी पैसे दी दौड़ है, जिस नूं दौड़दियां दौड़दियां मनुख एक दिन तय पैंदा, मिट्टी दी देरी हो जांदा। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। इसलिए गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी मेहर कर रहे हन, कह रहे हन, पवरा फूल भवंत्या दुख अत भारी राम, मैं गुर पूछया अपना साचा विचारी राम, विचार सतगुर मुझे पूछया पवर बेली रातो, सूरज चढ़िया पिंड पड़िया तेल तावन तातो, जब जम जग बाधा खाए चोट, क्योंकि जपया नहीं तंदियां विच रुझिया रहा, हुन जम ने आके पकड़ लिया, ते फिर जम का डंड मूंड में लागे, कहत कबीर तब ही नर जागे। हुन जाग आई, हुन होश आई कि कितने अमोलक श्वास में तंदियां विच उजाड़ के आ गया। इसलिए जम मग बाधा जिले जम ने बन लिया खाए चोटा, फिर सजा मिली कोरड़िया दी शब्द बिन बेता लिया। गुरु की बाणी नाल प्यार नहीं कीता। गुरु नानक साहब जी मेहर कर रहे हन, कह रहे हन, सच कहे नानक चेत रे मन, मैं तेनु सच कह रहा कि सिमरन कर, जे अपना उधार चाहना अपना भला चाहना संसार ते आउना सफला चाहना तां सत संगत च बह के जप श्री वाहिगुरु। सच कहे नानक चेत रे मन, मवरे मरे पवरा का दे, उपाई नहीं ते संसारी तंदिया में एवें ही मर जाएगा। जाग साड़ी सुती हुई सुरत नू जगा रहे हन गुरु नानक साहब जी के विसर गया।

साहिब सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह दा जिन्हां ने यह हुक्म सुनिया नंदेड़ सचखंड साहिब पातशाह दी हजूरी विच सदके जदो तख्त चवर दे मालिक साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब नूं थापिया गया इत्थे प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा ते हुक्म दे अंदर बड़ा फर्क है। प्रेरणा किसे नूं कीती जाए वह प्रेरिया जाए ना प्रेरिया जाए उहदी मर्जी। जदों हुक्म किसे नूं सुनाया जाए जां तां हुक्म मन के प्रवान हो जाऊ ते जां हुक्म अदूली करके गुनाहगारां दी कैटागरी शामिल हो जाए। हुक्म दा अर्थ दूजा नहीं निकलदा है, या वह मन्या जांदा है ते जां उसकी अवज्ञा हुंदी है। अवज्ञा करन वाले नूं जो सजा हुंदी है यह सारा संसार जानदा। हुक्म ला एंड आर्डर नूं कोई ना मन्ने ता जो उसका हशर हुंदा है, जो उहदा वर्तारा वरदा है, किसी भी अग्ञानी तो अग्ञानी पुरश तो भी भुला नहीं। कलगीधर पातशाह का यह हुक्म है।

एक लोभी पुरुष पदार्थां विखे बड़ा लोभ करदा सी, पर लोकां नूं पत्यान वास्ते प्रभु दा सिमरन भी बड़ा करना कि मैं बड़ा भगत ज्ञानी हां, क्योंकि हजूर दा वचन है जो जाने हो भगत ज्ञानी आगे ठाकुर तिल नहीं मानी, जो जाने हो कथनी करता व्यापारी बसुधा ज्यो बसता, साध संग जिन हो मैं मारी नानक तांकू मिले मुरारी। भई रब दी प्राप्ति तां उनां नूं ही होंदी है जो निम्रता दे नाल निष्कामता दे नाल मन करके परमेश्वर दी भगती करदे हन। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮਾਲਾਂ ਫੇਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਬਗਲ ਸਮਾਧਾਂ ਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਭਗਤੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਸਦੇ ਇਸ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਫਰੀਦਾ ਜਾਂ ਲੱਭ ਤਾਂ ਨੇਹੋ ਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਭ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨੇਹੋ ਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਨੇਹ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਲੱਭ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਨੇਹੋ ਕਿੱਚੜ ਘੱਤ ਲੰਘਾਈਏ ਛੱਪਰ ਟੁੱਟੇ ਮੇਹੋ। हे भाई जे पदार्था दा लोभ है तो प्रभु विखे सच्चा प्यार किवें हो सकदा, जे खुदा दा नेहो प्यार है तो पदार्था दा लभ करना तो फिर कूड़ा है, क्योंकि दो गल्लां इकट्ठियां नहीं हो सकदियां। जे प्रेम है तो लोभ नहीं, जे लोभ है तो प्रेम नहीं। इसलिए भाई जे प्यार करना है ता सच्चा प्यार कर गुरु दे नाल, ऐसे लेख ना लिख जदों तू अकाल पुरख वाहिगुरु दे दरबार विच जावे ते तैनू अखां नीवियां करनियां पैन, शर्मिंदियां होना पवे। इसलिए

एक रजोगुणी पुरुष जो फरीद जी दे पास आया, मथा टेकिया, ते मथा टेकन लग्या ओ पूरी तरह ना चुकिया, भई मते पग ना मैली हो जावे। उच्चारण करो श्री वाहेगुरु। तब बाबा फरीद जी कहंदे न, भई वेखो इसनू पुलावा पग दा है, भई मते पग मैली ना हो जावे मथा टेकन लग्या। पर इस अणभोल पुरुष नू ए नहीं पता, भई एक दिन ए सिर भी जिस सिर ते पगड़ी बनी है, इस सिर नू भी मिट्टी ने ही खा जाना है। उच्चारण करो श्री वाहेगुरु।

फरीद जी बैठे हन रब दे प्यार विच जुड़े होए तां आकाश बाणी होई हे फकीर एवें जमीन पर लेट के क्यों दुख पा रहे हैं मंजा लेफ तुलाई कुछ कपड़े नाल ले ले क्योंकि सर्दी दे दिन हन ते नाले सिमरन कर नाले सुख पो ता बाबा फरीद जी रब दे रंग विच रते होए जिन्हां दे हिरदे विच शिक सी साईं दे मिलन दी ए गल सुन के फरीद जी कहंदे ने हे वाहिगुरु मेरे पास खटोला भी है लेप भी है कपड़े भी हन आख्या केड़े कपड़े हन केड़ा खटोला है ता बाबा फरीद

कंध कुहाड़ा शेर घड़ा वन के सर लोहार फरीदा हो लोड़ी सहो अपना तू लोड़े अंग्यार ए लोहार कंध कुहाड़ा कंधे ते रख के कुहाड़ा सिर पर पानी दा घड़ा चुक के ते फिर बन विच फिर रहा लकड़ लभदा ते फरीद जी कहंदे ने तू कोले लोड़दा है तू लभ रहा कोई चंगा जिहा मुड लभ जाए उसनू कट के साड़ के कोले करके घर लै जावां।

के काल जो है ए मौत रूपी कुहाड़े नू हर वेले चुक के हर मनुख दे नाल है। परमेश्वर दे हुकम अनुसार ए जीव आत्मा नू ले जांदा है। फरीद जी कथन करदे हन, मैं तो अपने पति खुदा दी प्राप्ति नू चाहुंदा हां ते तू मेरे अंगियार औगणा नू वेखना चाहुंदा है। इस दे विच कोई औगण होवे तां मैं इस नू फड़ के लै जावां, कदों इस दे श्वास समाप्त होण ते मैं इस नू लै जावां। तो फरीद जी अपने प्यार विच रंगे होए उस लोहार नू कह रहे हन, भाई तू अंगियार नू लोड़ रहे हैं जंगलां विच, असी रब नू लभ रहे हां। कंध कुहाड़ा सिर घर

उड़ो ना कादा कारे, देख मिली जय अपने राम प्यारे। राग कौड़ी दे विच उचारण किया होया भगत कबीर।

खास किस्म की अवस्था ह्यूमन लाइफ दे विच कीता होया एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस। उसनु तुहाडे सामने मैं पेश करना है, जो कि एक्सपीरियंस बहुत विरले बहुत भागशील लोगों की जिंदगी दे विच ही हुंदा है। असी अपनी रोज की जिंदगी सवेरे उठन तो जो साड़ी अख खुलती है उस तो लैके रात में जो असी बिस्तर दे विच चले जाते

इस दे विच भी गुरु अर्जन देव जी ने अगेन दोबारा उसे ही औरत का प्रमाण दिता है जिसका प्रमाण कबीर साहब ने दिता है। कहते जिस तरह किसी पत्नी का पति बाहर चले गया होवे अगर वह हार कज्जर वस्त्र अभरण गहने आदि पावे भी ता भी कहते उस दे अंदर की हुंदा है मोहन नींद ना आवे हावे अते उस दे अंदर हौके हुंदे हन ते उस दे अंदर की इंतजार हुंदी है उडीनी यानी उड़ीक उडीनी उडीनी उडीनी कब घर आवे री कदों ओ प्रभु प्यारा घर आवेगा। ये मिसालां दे के भगत दे गुरु दे सिख दी अंदरली अवस्था नू गुरु साहब ने पेश करन दी कोशिश कीती है अते गुरु ग्रंथ साहब आप जी ने यह भी पंक्तियां सुनिया ही है ना कि खंभ विकंदड़े जेल हां कि ना साविं तोल तन जराई अपने लहां सो सज्जन टोल। कहिंदे इंतजार तमन्ना इतनी वध गई है कि अगर किते मैनू खंभ बाजार चो मिल जान ते मैं अपने आपे दी कीमत दे के उन्हां नू खरीद के अपने तन दे नाल जुड़ा के अते उड़ारियां लगा लगा के अगर उसनू मैं लभ सकां तो कहिंदे मैं ए भी करन नू तैयार हां। खंभ विकंदड़े जेल हां कि ना सावी तोल तन जराई अपने लहां सो सज्जन टोल। तो हुण तक मैं जितनिया भी मिसालां आप जी नू दित्तियां हन इन्हां मिसालां दे विच यह पेश कीता है यह आप जी दे सामने रखिया है कि गुरु साहब एक खास किस्म दी अवस्था एक खास किस्म दा ह्यूमन लाइफ दे विच कीता होया एक्सपीरियंस जो कि बहुत ही पाकशील लोगों ने कीता है उस दे नाल साडे नाल उस नू साडे नाल जो शेयर कर रहे हैं साडे नाल सांझा कर रहे हैं। हुण जो अगला हिस्सा थोड़ा जा आप जी दे सामने मैं रखना चाहना हाँ

तेरे अंदर कदे वैराग, तेरे अंदर कदे उदासी, तेरे अंदर कदे उपरामता आउंदी ही नहीं है। पाप उन्हां दे कहण दा यह है कि जदों अकाल पुरख वाहिगुरु का प्रेम किसी नूं लग जाए तो उस दे अंदर सब तो पहली चीज की हुंदी है, बाकी तमाम चीजों के प्रति थोड़ी रुचि घटनी शुरू हो जाती है। जगत के प्रति संसारी चीजों लई एक उपरामता आनी शुरू हो जाती है। उस उत्ते गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का आप जी नूं एक जो श्लोक है वह सुनाना चाहना।

ते सखने हिताने गुरु साहब ने कहा अंदर खाली प्रेम बिन, अंदर खाली प्रेम बिन ढह ढेरी तन छार। ये तन ते सिर्फ कहंदे ने एक छार दियां स्वाह दियां मुठ्ठां हन जिन्हां दे अंदर रब दा गुरु दा अकाल पुरख वाहिगुरु दा वैराग अते प्रेम अते भाव नहीं है।

इतनी सिमरन सेवा भगती करदियां होया भी किसे गल दा हंकार नहीं करना, ए नहीं मन विच लियाउणा भई मैनू तां गुरु जरूर तारे ही गा ना, भावे किसे होर नू तारे ना तारे। नहीं, साडे जपा तपा नाल नहीं गल मुकनी, हे निरंकार तेरी बख्शिश वड्डी है, तेरी बख्शिश सानू तार सकदी है, ए अरदास करन दे ही सानू गुरु ने प्रेरणा दिती है। बाबा साहब सिंह जी बेदी गुरु नानक दी अंश बंश जो हर एक शहरां विच जाके गुरु घर दा प्रचार करया करदे सन, और बड़ा लश्कर सी, बड़ी मानता सी इना दी, हाथी घोड़े रथ होर बेअंत संगता ने होना, ते जिस शहर जाना उन्हां ने दो दो चार चार मील अगों ही चौंकियां करदियां कीर्तन करदियां लैके आउणा, इतना अदब सत्कार होंदा सी। वड्डियां कमाइयां वाले सन बाबा साहब सिंह जी। जदों चंग मिखियाने आए साडे शहर विच, बजुर्गां ने बचन सुनाया, चंग मिखियाने आए, कितनियां संगतां आके जुड़दियां सी, ते एक कलंदर रिश लैके आ गया। बाबा जी अगे आके नमस्कार कीती, ते रिश नूं कहण लगा तुम्हें मथा टेक, ए वड्डे घर हन, वड्डे घर दे बच्चे हन, गुरु नानक दे बच्चे हन, इत्थों वड्डियां बख्शीशां मिलनगियां, वड्डियां दातां मिलनगियां, क्योंकि रिश नूं समझाया होया सी, ते रिश ने भी मथा टेकिया बाबा साहब सिंह बेदी जी दे अगे, इत्थों वड्डियां दातां मिलनियां हन। ता बाबा जी कहन लगे फिर वड्डी दात देईए। हां महाराज देओ। ते बाबा साहब सिंह जी ने अपने मुंशी नूं कहा कि जा 32 रुपये नौआं ने जाके खजाने विचों ले आ, ते इस कलंदर नूं दे दे, जितने पैसे हजूर ने हुक्म कीते आके कलंदर दी चोली विच पा दिते। बड़ा खुश होया भई वड्डे वड्डे घर वेखे हन, कोई चुआनी कोई अठानी कोई रुपया, कोई वड्डा होएगा जिसने 5 रुपये देते होंगे, पर 32 रुपये नौ आने, एडी वड्डी बख्शीश। बाबा साहब सिंह जी कहन लगे कलंदर नूं भाई चंगी तरह ये पैसे गिन लै, ये 32 रुपये नौ आने हन, तू क्या सी ना रिश नूं भाई वड्डियां बख्शिशां मिलदियां हन। हां महाराज तुसी दित्ती वड्डी बख्शिश है, ओ अपने आप नूं ओ 32 रुपया नूं वड्डी बख्शिश समझ रहा। ते बाबा जी कहन लगे हुण रिश दे गल विचों रस्सा खोल दे, महाराज ये भज जाएगा ते फिर हाथी नहीं आउणा। कहन लगे हुण ये भजन जोगा कित्थे रह गया है, हुण ये किते नहीं जा सकदा, हुण इहदा अंत समा नेड़े है, जो तेरा इसका हिसाब सी ना वह पूरा हो गया, तू भावे पैसा पैसा करके कट्ठा करके 32 रुपये नौ आने तू इहदे कोलों कर्जा लैणा सी, तैनू कट्ठा दे दिता है, ते ए हुण गुरु नानक दे दर ते आ गया, ए हुण बख्शिया गया, ए तेरे नाल रहिंदा तां पता नहीं किहड़ियां जूनियां विच परमना सी, क्योंकि हुण गुरु नानक दे दर ते आ के वड्डी बख्शिश मंगी है इसने, हुण ए गुरु नानक दे चरणां विच जा के विराजेगा। तो अनेक लोगां ने ए वचन सुने और वेखे के उसे वेले रिश शरीर त्याग गया, ते उसकी रूह जो सी वो गुरु नानक दे चरणा विच जा विराजी। दया करो किस मेहर उपावो, गुरु नानक दे दर ते आके जेड़ा भी कोई भाई श्रद्धा दे नाल चुकता है गुनाह बख्शाउंदा है, फिर बख्शन विच देरी नहीं। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने भी ये शब्द उचारण किया साडे गुनाह बख्शाउण लई, वो आप तो निरंकार सन, आप तां समर्थ पुरख सन, अनंत कला दे मालक सन,

आश करनी है कि मेरा मुझ में किश नहीं, ते जे कुछ चला गया है ता हे निरंकार ए मेरे लिए चंगा नहीं होना, ताइया तू मोड़ लिया ना। उच्चारण करो श्री गुरु नानक दे घर विच हंकार नूं कोई था नहीं, इत्थे वड्डे तो वड्डा पापी आके तै पवे बख्शन विच देरी नहीं, पर जेड़ा हंकार करदा है कुछ बन के आउंदा है गुरु नानक दे दर ते, ओ कदे कुछ लै जा नहीं सकदा, सगों अपने पुन दे जांदा है, वंड जांदा है। उच्चारण करो श्री इथे ता भाई ए अरदास करनी है, अपनी करनी कर नरक हूना पावो ठोर, ए निरंकार जे मेरिया करनिया ते जाओगे, जे मेरे गुनाह वल तकोगे ता शायद मैनू नरक भी ना चल सकन। तुमरो बिरद को आशरो समार हो, तेरा बिरद है तेरी बख्शिश सानू तार सकदी है, तेरिया रहमतां दा सदका ही असी तर सकदे हां, इसलिए दया करो।